0: पाए।
1: देखा, मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया है। क्यों भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूँ ना?
2: पकड़ लो।
1: नहीं,
0: आपकी तारीफ।
3: भाई यही तो है वो वकील साहब। ओ
0: अच्छा अच्छा, जो यहाँ का हिसाब किताब देखते हैं। भाई बहुत अच्छा देखते हैं तुम, बहुत अच्छा देखते हैं।

0: सिकंदर को खत्म करने का एक अच्छा आइडिया है।
1: बहुत खूब मुकर्रर भाई, बहुत खूब बहुत खूब। सोडा या पानी?
0: सोडा।
1: सोडा
0: पानी पानी।
1: दिलशा दिलशा आदर से घुमा दे सर घुमा तेरी।
2: आए प्यारे लाल जी, प्यारे लाल जी,
3: प्यारे लाल,
2: प्यारे लाल जी, कहाँ हो भाई?
4: अमा
2: वहां क्या कर रहे हो?
5: हाँ चलो, अबे आगे से आ, आगे से। हाँ अच्छा आदमी है। अरे कौन है?
6: फुट